तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह वसाला तरों तरा तरपन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जा मैं अमृत नाम है ज्ञान भक्त वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग गुर के शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी।

0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता वख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं आन, साध की शोभा सदा। सतगुरु जुगो जुग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्री जगदी ज्योत। शब्द अवतार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पवित्र गोद विच, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तपस्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई, अपनी हाजियां लगवाउन दे लई, सत्संग हरी जस कीर्तन दा लाभ उठाउन दे लई आए हो, वडभागे हो। जो अपने जीवन दियां अमोल कड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनिया बना रहे हो, सचमुच इन्हां कड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रहियां हन। साहबजादे बाबा जी सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर, यहां दे 300 साले दिहाड़े संगतां मना रहियां हन। एक कितने दिहाड़े कठे होए हैं। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, वडभागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: वेदां तों वी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे विच महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जान नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत, इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहिगुरु परमेश्वर बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग, विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हन, परंतु सात संगत उस दी कुदरत कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहिगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें इक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। इस तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसी भी सास पवित्र लफ्ज उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि वह बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरू।
0: परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। इस सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन कीता, बड़ी महिमा वर्णन कीती है। आओ ऐसे ही महापुरुषां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। वज वज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो, अपनी हाजरी लगवाया करो।

0: Gücümde. ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, सृष्टि का करता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करते हैं। असी लोग ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़ियां होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच परम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेक तरह दे दुखां सुखां दे विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए, वो सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन शिव

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हां नूं देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मन्ने गए हन। जा रहे हैं किसी जंगल के रास्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करते हैं, मत्था टेक रहे हैं, धूड़ चक चक के मत्थे ना ला रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, धरती से नमस्कार करते हैं बारंबार, जिन्हां लोग नमस्कार करते हैं। पार्वती पूछती है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किसनू नमस्कार करदे हो, तुसी किसनू मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो। भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषा ने तपस्या कीती है। बोलो ए, धरती दा कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती दी ए समर्था है कि पवित्रता बख्श सकती है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषां दा जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साडे लोगां वास्ते। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੋਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਹਰਜਿਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਟਿਆਲੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ

करो, साढ़े को टाइम नहीं है। गड्डी दे विच बैठे बैठे ही बस जो कोई गलबात करनी है कर लो। तो गड्डी दे विच बैठे बैठे भाई वीर सिंह जी उन्होंने कहना कीता, भाई गुरमुख सिंह जी साढ़े को टाइम तो नहीं है, परंतु असी चाहते हाँ कि असी बाबा हरदेव सिंह उन्होंने इस थे असी नमस्कार कर लिए, एक बारी गुरु साहब न मत्था टेक लिए। संत गुरमुख सिंह जी हाथ जोड़ के कहंदे ने जिवें आप जी की मर्जी होवे। भाई वीर सिंह जी गड्डी तो उतरे, महापुरशां दे पवित्र स्थान ते नमस्कार करन लगे, मत्था टेकन लगे। असी लोग मत्था टेकदे हाँ, नमस्कार करदे हाँ भाई। हुण मत्था टेकिया, सारिआं ने जल्दी नाल मत्था टेक के खड़े हो गए। बहुत इन्हें तो मत्था लाया भी नहीं, जे किसी ने लाया तो थोड़ा जा मत्था ला के बस चुक लिया। भाई वीर सिंह जी ने मस्तक लाया, मत्था लाया, सारे उठ के खड़े हो गए, परंतु भाई वीर सिंह उन्होंने मस्तक नहीं चुकया। पांच मिनट निकल गए, सारे देख रहे हैं, दस मिनट निकल गए, पंद्रह मिनट निकल गए, बीस मिनट निकल गए, पच्चीस मिनट निकल गए। बोलो सब इतने मिनट नमस्कार, इनी लम्मी नमस्कार, इतना वड्डा मत्था टेकना, नमस्कार करनी। ते साध संगत संत गुरमुख सिंह ने कहंदे असीं सोचदे हां भई पच्ची मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए। फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह नूं कि भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी इक वारी होर मत्था टेक लिए। बोलो सतनाम, टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा इक वारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपदी मर्जी है टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे। इसे तरह ही 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया। बोलो सतनाम, संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं कीता, कदे सवाल नहीं कीता, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहंदे ने पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले तां तुसीं कहंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असीं बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, नाले तुसीं मत्था टेकदे नमस्कार करदे 25 मिनट मत्था टेकिया, 20 मिनट 25 मिनट नमस्कार कीती, दोबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे साडे कोल टाइम नहीं है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर का भजन होया, असी तो अपने आप नूं नमस्कार करके मत्था टेक के चार्ज कर रहे सी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिवें बैटरी डाउन हो जाती है कम करदी करदी, फिर उस नूं चार्ज करन दी लोड़ पैंदी है। कहंदे ऐसे तरह असी तो मत्था टेक के असी अपने आप नूं चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो साध संगत जिथे वाहिगुरू का भजन, वाहिगुरू का सिमन, किसी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे चरण पए होन, भगती कीती होवे, सो शिव जी भगवान कहंदे ने हे पार्वती इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने, असीं ऐवें नहीं कहंदे, इथे कोई मंदिर कोई होर धार्मिक स्थान है तां है नहीं, जिथे असीं मत्था टेकदे हो ये धूड़ चक के मत्थे नाल ला रहे हो। कहंदे इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, किसी ने परमात्मा की याद विच लीन हो के ओदा भजन कीता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इसे करके गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे फिर पढ़ो,

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीद नांगलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतिया। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजा का त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोगों ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इसनू घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनू भी कई लोग लानता पाउन लग गए घर वाले नू भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सो सास सिंह तैसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरू। सत्संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़िया दे पौन ते सुट देंदे सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहिंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सात संग लेल दे विच सात संगत पा के गोले चलाउंदे, सात संग बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सात संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सात संग तुपन जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरू। देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े घाट घट रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरू। सी ना कहंदे, मेरे गुरु ने, मेरे महापुरुष ने, इस करके सी नी। सात संगत ऐसा जीवन बाबा जस्सा सुना ना सी। बोलो इतना हुक्म,
2: मुर्दा हो जबे मरीद गली हो बना नहीं।

कमाल दियां गल्लां की कमाल दे बचन कहे कथा कीर्तन मन न लावे संत सिख को बुरा अलावे निंदा जुआ हिरे जो माल जो पंक्तियां तुसी सुनी है कई अजकल लाटरियां पाउंदे ने ए भी जुआ है आखिया निंदा जुआ हिरे जो माल महा दुखावे तिस को काल आ देख लो नाल नाल मन नूं तोलियो भाई किथे घट हां किथे पूरे हां पूरे होना है बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोजी नूं धारण करना है। एक होर बड़ी कमाल दी गल कही जी सिख एक होर काम करे

कहिंदे कोई दिन संगरांद है कोई होर है गुरपुरब है तिन में कछ प्रसाद बनावे कर कड़ा खालसे खवावे आखो सतनाम अगों बड़ी प्यारी गल कही जी वो कह के मैं समाप्ति करना तुसी भी कई बारी घर च संगत आवे या खंड पाठ होवे प्रसाद बनाउंदे हो ते महाराज ने दस्या प्रसाद भी किवें बनाउणा है

तीन चीजा एको जिया खंड आटा ते घ्यो तीन चीजा एको जिया इनू त्रिपावल की दे कहते हैं।

कोई असमेध यज्ञ करे अपने बराबर तोल के अपने वजन दे बराबर तोल के सोना चांदी दान कर लवे कोई प्राग दा इशनान कर लवे पर परमात्मा दे नाम दे बराबर नहीं पहुंच सकते।

मेरा नाम ले दी तेरा काम हो जाएगा। इन्ना काम करी मेरा नाम ही चलता है, मेरा नाम ले दी तेरा काम हो जाएगा। पर ख्याल करो जे एक संसार दे विच किसे वड्डे मनुख दा जेड़ा कुछ भी नहीं, जेड़ा कुछ मनुखां ते सिर्फ हुक्म कर सकदा है, जेड़ा कुछ भी नहीं जिस दे कोल कुछ हो सकदा है, कुछ मनुखां नाल ज्यादा साधन होण, जे उस दा नाम लै के काम हो सकदे ने, जेड़ा फिर वड्डियां तो वड्डा शहनशाह है कि उस दा नाम लै के साडे काम नहीं हो सकदे। जप सतनाम श्री, फिर उसका नाम लैके भी काम हो सकते ने। नाम लेना, उसकी याद विच रहना, उसके नाम नू विसारना ना, उसके नाम नू हिरदे विच उकर लेना, ते धर्मराज नू कह देना जिसने तैनू बिठाया मैं उसका बंदा। जब सतनाम श्री हो फिर तो धर्मराज दे भी अड़का नहीं लगना। जब सतनाम श्री वाहे गुरु, ते जदों धर्मराज नूं भी पता लग गया ना जिसने मैनू बिठाया है, ए उस मालिक दा बंदा है, उसका नाम लै रहा है, ते ओ भी अगों हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, ते पता की बोलेगा, हूं सेवक ठाकुर अविनाशी। जब सतनाम श्री, मैं तुहाडा सेवक, तुसी मेरे मालिक। इस करके कहिंदे नाम अमोल।

कोई प्रोफेसर सी उसकी प्रोफेसरी नु कोई नहीं खो सकया। जे अगर कोई अपने शरीर नु बचा के आ गया डॉक्टर दी डॉक्टरी नु कोई नहीं खो सकया। जे अगर कोई इंजीनियर अपने शरीर नु बचा के आ गया उसकी